0: जी आपके चरण कमल बलिहारी है। श्रीदीप नारायण भगवान की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की जय। अलकपुर जी महादेव की जय।
1: विश्वागुरु परमहंसी स्वामी महेश्वरानंद गुरुदेवा की जय।
0: Further about the prayers tomorrow.
1: A dál o modlitbě si budeme říkat
0: Om
1: zítra.
0: Shanti, Shanti, Shanti.

0: अलकपुरी जी महादेव की जय। देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की जय। आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की ओम। हरिओम हरिओम।
1: विश्वगुरु परमहंस स्वामी महेश्वरानंद गुरुदेव की जय।

0: भगवान की
1: जय।
0: अलकपुरी जी महादेव
1: जय।
0: देवपुरी सा महादेव
1: जय।
0: माधव कृष्ण भगवान
1: जय।
0: ओम शांति शांति।
1: जय।

0: it will become gold.
1: उसे को भी मैसेज पर मैंने योग दिया तो.
0: Mahatma Gandhi ji said.
1: Mahatma Gandhi ji को.
0: The Mother Earth has enough for everyone's needs.
1: माता धरती इनाफ फॉर एवरीवन्स नीड्स.

0: सतगुरु भगवान की
1: जय हो। बोल दे मामा, एक आध बोल दे, फिर जा
2: बजाओ थे।
0: बोल ले
2: नहीं, हाँ बोल ले।
1: ठीक है।

0: नींद का जरा जे
1: नींद वाला व्यम कर
0: मुझे फिर थोड़ी काटी है महाराज काट गया
1: है अरे भाई
0: बोलू वो
2: चलो आवाज बोलो साहब।

हिंदू धर्म सम्राट सतपुरुष माधव कृष्ण भगवान की जय हो। विश्व गुरु महामंडलेश्वर महेश्वर आनंदपुर जी गुरुदेव की जय हो।

ओम श्री दीप नारायण भगवान की देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की सत्य सनातन धर्म।

0: बोले श्री दीप नारायण भगवान
1: की जय।
0: श्री देव पुरुष महादेव
1: की जय। ओ माय फ्रेंड, आई एम बेडिंग इन द ओशन ऑफ ब्लिस व्हिच इज एंडलेस एंड डिवाइन। आई एम बेडिंग इन द ओशन ऑफ माय हार्ट।
2: O můj příteli, koupu se v oceánu nekonečnosti, v oceánu blaženosti, tento oceán je v mém srdci.